0: आप ही सृष्टि नु पैदा कर रहे हैं।
1: बंधन परे
0: कचूना द्वारा तुसां
1: खेच
0: चलाया
1: छुटे सब किछ होते उपाए नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए कोना निभयो साथ
0: कौना नानक ये विपत में
1: टेक एक रघुनाथ
0: आदेश।

है सर्वंकर है सर्वासी है सर्वनाशीय है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है।

कृत अमित वेश्वर परमेश्वर कृता कृत मृता मृत है अजबा कृत है मृता मृत है नरनायक हैं खलकायक हैं विश्वम्बर हैं करुणालेह नृपनायक हैं सर्वायक हैं पापंजन है अर्गंजन है रिप्तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर हैं हर्ताहर हैं परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास हैं जास के जास हैं पुजंग प्रयार शांद नमो सूर सूर जे नमो

नमो परम तत्ंगा तत्ंगस्वरूपे नमो जो जुगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो

जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। हरे अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाही। तिन्हां प्यारियां सचियारियां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर बोलो जी वाहे गुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेते आवे चेता मन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतर जामी अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ श्री ननकाणा साहेब। होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हिन माणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे पावन हजूर चरणा विच अरदास बेनती है सतगुरु जी आप जी ने कृपा बख्शिश रहमत कीती। अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हो के संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते। आप जी दी पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दे नितनेम बाणियां दे पाठ होए। बाणी पढ़दियां सेवा निभाउंदियां होईयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी जी। अगे तो समत बख्शणी सिर ते मेहर भरिया हथ रख के शरदा प्यार भावना दे नाल सेवा करन दे उद्दम बख्शणे। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगत ते सेवादारां दे हिरदियां ते वसाउणा सरबत संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी। चलिया होया कदम कदम लेखे विच लाउणा शुभ मनो भावनावां पूरियां करनियां। परिवारां विच सुख शांति आपसी प्यार इतफाक सेवा सिमरण दियां दातां बख्शणियां। बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के गुरमत दी सोझी उच्च विद्या दे दान बख्शणे। खालसा पंथ दी चढ़दी कला रखणी पंथ विच एकता प्यार इतफाक बख्शणा जी। सारे संसार ते सुख वरतौणी सरबत जियां दा भला करना। पावन हजूरी अंदर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे।
ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ

0: पाई है और एक मथु कम कुवार पौड़ी
1: नदर क्रिया अपनी ता नदर सतगुरु पाया भेजो पद जन्म पर म्याता सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जवर दाता को ने सब सुने लोक सभा सतगुरु मेरे सच पाजन विच आप गवाया।

0: सिमरत कछ बिगन न लागै।
1: प्रभु कै सिमरन आंदै जागै।
0: प्रभु कै सिमरन पौ न व्यापै।
1: प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै।
0: का सिमरन साध कै संग
1: सगल दान नानक हरंग।
0: प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध न

0: साहिब सदा दयाल
1: नानक पात माया के हेत
0: सर पर होवत जान अनेत
1: रखि साया सिउर अगलावे
0: ओ बिनसे ओ मन पछतावे
1: जोड़ी से सो चालन हार
0: लपट रहो तै अंत अंधार
1: सिउ जो लावे ने
0: ताके ओ हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप लै लाई
1: तन तन कुटुंब सुभाया
0: मिथ्या होमे ममता माया
1: मिथ्या राज सोहन तन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रस हाथी हसु वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया के खास्ता
1: मिथ्या तू मुह अभिमान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: की सरण
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या शर्म पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त पर दर्प क्यों हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपाद
0: मिथ्या

0: धरनी पर ठाकर प्रवतापे।
1: जह प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सास सास सिमरो प्रवियुचे।
1: जह प्रसाद पाई दर लव दे
0: नानक ताकि भगत करे।
1: जह प्रसाद आपूखन पहरी जे
0: मन ते सिमरत क्यों आलस की जे।
1: जह प्रसाद असब अस्त असवारी
0: मन ते प्रभु को कबू नाम दिसारी।
1: जह प्रसाद बाग

0: कई कोट पय तीरथ वासी
1: कई कोट मन पर मैं दासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट

0: को हिरे,
1: कई कोट पर दुख ना करे,
0: कई कोट माया श्रम माए,
1: कई कोट पर देश परमाए,
0: जित जित लावो तित तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस होगी,
0: कई कोट पंखी सर पे उपाए,
1: कई कोट पाथर वृक्ष ने पजाए,
0: कई कोट पवन पानी बैसांतर,
1: कई कोट देश को मंडल,
0: कई कोट ससीर सूर नखतर,
1: कई कोट देव दान इंद्र से शतर,
0: सगल समग्री अपने सूत तारे,
1: नानक जिस पावे तिसन सारे,
0: कई कोट राजस्थान सातक,
1: कई कोट वीर प्राण सिमरता सासत,
0: कई कोट किए रतन संबंध,
1: कई कोट नाना प्रकार जानत,
0: कई कोट किए चिर जीवे,
1: कई कोट गिरी में स्वर थीवे,
0: कई कोट जख किन्नर पिचास,
1: कई कोट कूत प्रेत सुकर मृगाज,
0: सब ते नेरे सबहूं ते दूर,
1: नानक आपत्या परपूर,
0: कई कोट पताल के बासी,
1: कई कोट लार

0: सब को खोजंते
1: आत्म में पार ब्रह्म जानते
0: कई कोट दर्शन प्रभ्यास
1: इनको मिलो प्रभ अविनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार ग्रंथ लगा रंग
0: जिनको होए आप सो प्रसन्न
1: नानक के जन सदा नाम तान
0: कई कोट खाणी अर खान

0: सदाहर्जाप
1: अनासिप्राप्य आप
0: आपन किया कछु न होए
1: जेसो प्राणी लोचे कोए
0: जिसबिन नाही तेरे किस काम
1: गत नानक जपे हर नाम
0: रूप बंत होए नाही मोहे
1: प्राण की ज्योत सगल कट सोहे
0: करवंता होए क्या को गर्व

0: करो इनान,
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान,
0: साध सेवा बड़ भागी पाइए,
1: साध संगा कीर्तन गाइए,
0: अनक विघन ते साधु राखे,
1: हर गुण गाय अमृत रस चाखे,
0: कोट गही संते दर आया,
1: सर्व सुख नानक तह पाया,
0: मृतक को जी वालन हार,
1: भूखे को देव तिहार,
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माए,
1: गुरु लिखे का लेना पाए,
0: सब कुछ तुस्काव करने जोग,
1: दूसर हुआ न होग,
0: जप जन सदा सदा

0: जन अपना प्रभु पुछाता
1: सो जन सर्व थोक का दाता
0: इसकी शरण सर्व सुख पावे है
1: इसके दास सब पाप मिटावे
0: अवर सियान सगली

0: मन बांशत नानक फल पाए।
1: संत चालस तेरा तना
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना।
1: सौतमीत कुटुंब अरबनता
0: इनते कौतुम कम संता।
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार।
1: हस्ती रथ असवारी
0: झूठा डांक झूठ पासारी।

0: दर्शन देख तो भरत श्रेष्ठ,
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सकल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: सेवा सेवक परवान
0: अंतर